0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: prevented from attending party meetings. Meanwhile, stunning scenes from Cooch Bihar's Mathi Banga have in fact emerged. Local leaders were allegedly seen returning cut money to villagers at a public gathering, fearing legal action.
1: एक केस हिस्ट्री आपको बोला है टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है टीएमसी चोर है आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है जो कंप्लेन है कंप्लेन डोर टीएमसी का एमएलए ने किया है ऋतुव्रत बंदोपाध्याय संदीप शाह इसमें कोई हमारी रोल नहीं है
2: तृणमूल कांग्रेस एमएलए दे पुलिस दिए भय देखाना होच्छे लोकल आईसी एवं एसपी रा फोन करे बोलछेन एवं बाड़ीते पुलिस पाठिए रखछेन जाते तारा बेरोते ना पारे एवं तादेर परिष्कार बला होच्छे दल भांगुन अमुक लोकर साथे गिये जोगाजोग करुन প্রথম ফোনটা পুলিশ করছে দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপির অফিস থেকে যাচ্ছে
3: দেখে পাবলিক তো নারাজ হ্যাঁ সাফ দিখ রাহা হ্যাঁ নারাজ বহুত সারে কারণ সে হ্যাঁ ওর ইসমে কে হো রা বহুত সারে লিডার্স জো পাবলিক নারাজ হো এসা কাম নহীঁ কিয়ে হ্যাঁ ও ভি ইসমে পিস যা রহে হ্যাঁ তো জো আপনা আত্মসম্মান হ্যায় জিনকা জো পাবলিক কে লিয়ে কাম করনা চাহতে হ্যায় তো আবি হো সকতা ও লোক থোড়া সা ভি দূরি বনা কে রখ রহে হ্যায় परिस्थिति थोड़ा नॉर्मल होने के लिए वेट कर रहे होंगे क्योंकि इसको छोड़ के तो और कोई चारा नहीं है जिस तरीके के घटनाएं बाहर आ रही है पंचायत स्तर में म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पे ये तो कहीं ना कहीं हम लोग सबको शर्म में डाल दे रहा है हम लोग सबको यही लग रहा है कि भाई क्या चल क्या रहा था ये तो जब तक बाहर नहीं आता आप जान नहीं पाओगे अब जानकारी हो रही है तो खराब लगना तो बहुत नेचुरल है
4: दिस इज एन एट्रोशियस इवेंट People working in the office of Abhishek Banerjee, actually on 19th, on 6th, there was no resolution. There was a single resolution that Abhishek Banerjee needs to be congratulated for the effort he has given. On 19th, we were asked that to put signatures, attendance signature, but said that put the date as 6th. Then we saw, me and Sandipan, that there were many names who are not present in the meeting. So this is an atrocious event, outrageous. So he thought, as a custodian of the house, the speaker must be made aware, but because the speaker doesn't have a political party. So he thought it is necessary to go to the speaker and he went to him.
0: Well, let's bring you more updates coming out of West Bengal. Once a domestic help, today a West Bengal minister. Kalitha Marji's journey is one of the most remarkable political success stories in West Bengal. As a domestic worker, she earned about 2,500 rupees a month. She's now entered the state cabinet. Now here's a report on her rise from the grassroots to politics to the ministerial office. Take a look at the special report.
5: From cleaning utensils in other people's home to taking oath as a minister in West Bengal. This is the remarkable journey of Kalitha Marji. Hailing from Majpukur Para in Ward 3 of Guskara Municipality, Kalitha once worked as a domestic help in four households, earning barely rupees 2,500 a month. Even while grappling with financial challenges, she remained deeply involved in local issues and public life. Her political journey began over a decade ago at the grassroots level. A turning point came in 2021 when the BJP fielded her from Osgram Assembly constituency, a scheduled caste reserved seat that falls under the Bolpur Lok Sabha constituency. Though she did not make it then, the party reposed faith in her once again. Contesting from Osgram in Purba Bardhaman district, the 37-year-old defeated TMC candidate Shyama Prasanna Lohar by a margin of 12,535 votes. On Monday, that journey reached a new milestone as she was sworn in as a minister in the government, led by Suvendu Adhikari. Kalitha Marji's rise from a domestic worker to a cabinet minister is a story of persistence, resilience and grassroots politics. Her induction into the Bengal government underscores the BJP's effort to elevate leaders

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम टाइम विद मी हरीशा सहगल
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: वी एट एनडीटीवी ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस वाज द हॉटेस्ट इलेक्शन इन ऑल ऑफ इंडिया। All of India watched it on NDTV.
2: Why I say this, this could be a big story.
3: Thank you.
1: Stories that no one else had.
4: The memorial they have built is not just for Avicii.
1: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
5: इस वक्त यहाँ पर अफरा-तफरी का
1: moments that gave competition viral fever.
6: हमें का गुंडा हमला किया।
7: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा।
8: बंगाल बचाने का वोट।
9: Fight for justice. Fight for every woman here.
1: When it was anything Bengal, you tuned in only to NDTV. This is GOG of elections. NDTV.
10: Size of fish, what taste of fish you like.

0: years at a public gathering, fearing legal action. On the latest that's brewing in West Bengal, we've got some political crucial reactions lined up for you. Listen in.
1: एक केस हिस्ट्री आपको बोला है, टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए। इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन डोर टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है।
2: तृणमूल कांग्रेस एमएलए दे पुलिस दिए भय देखाना होच्छे। लोकल आईसी एवं एसपी फोन करे बोलछेन एवं बाड़ीते पुलिस पाठिए रखछेन जाते तारा बेरोते ना पारे एवं तादेर परिष्कार बला होच्छे दल भांगुन, अमुक लोकर साथे गिये जोगाजोग करुन। প্রথম ফোনটা পুলিশ করছে, দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপির অফিস থেকে যাচ্ছে।
3: দেখিয়ে পাবলিক তো নারাজ হ্যাঁ, ইয়ে সাফ দিখ রাহা হ্যাঁ, নারাজ বহুত সারে কারণ সে হ্যাঁ। আর ইসমে কে হো রা, বহুত সারে লিডার্স জো পাবলিক নারাজ হো এসা কাম নহি কিয়ে হ্যাঁ, ও ভি ইসমে পিস যা রহে হ্যাঁ। তো জো আপনা আত্মসম্মান হ্যাঁ জিনকা, জো পাবলিক কে লিয়ে কাম করনা চাহতে হ্যাঁ, তো আবি হো সকতা ও লোক থোড়া সা ভি দূরি বনা কে রখ রহে হ্যাঁ, परिस्थिति थोड़ा नॉर्मल होने के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसको छोड़ के तो कोई चारा नहीं है। जिस तरीके के घटना आ रही है पंचायत स्तर में, म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पे, ये तो कहीं ना कहीं हम लोग सबको शर्म में डाल दे रहा है। हम लोग सबको यही लग रहा है कि भाई क्या चल क्या रहा था। ये तो जब तक बाहर नहीं आता आप जान नहीं पाओगे। अब जानकारी हो रही है तो खराब लगना तो बहुत नेचुरल है।
4: दिस इज एन एट्रोशियस इवेंट। People working in the office of Abhishek Banerjee, actually on 19th, on 6th, there was no resolution. There was a single resolution that Abhishek Banerjee needs to be congratulated for the effort he has given. On 19th, we were asked that to put signatures, attendance signature, but said that put the date as 6th. Then we saw, me and Sandipan, that there were many names who are not present in the meeting. So this is an atrocious event, outrageous. So he thought, as a custodian of the house, the speaker must be made aware, but because the speaker doesn't have a political party. So we thought it is necessary to go to the speaker, and we went to him.
0: Meanwhile, the buzz over formation of a new Trinamool Congress without Mamata Banerjee and without Abhishek Banerjee has surfaced as far as West Bengal politics is concerned. Many have started asking, will the Maharashtra model play out in Bengal now? Basically, will the Trinamool undergo a vertical split as happened with the Shiv Sena in 2022? A buzz is growing around a possible rebellion within the Trinamool Congress, with speculation of a breakaway group challenging the leadership of Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. You see, the expulsion of two TMC MLAs after the signature row has only fueled the rumours. Claims of dozens of MLAs skipping Mamata Banerjee's meeting, reports of parallel huddles and talk of a possible split have now raised the big question. Is Bengal heading towards its own Shinde moment? The comparisons with Maharashtra

भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें जो अन्य राज्यों में हैं उनकी भाषाएं अलग हैं। समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट कहती है कि गौ हत्या पे एक समान कानून पूरे देश में बनाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
5: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
6: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।

0: आपकी सरकार उड़ीसा और बंगाल दोनों में है तो रसगुल्ला किसका है? उड़ीसा का या बंगाल का?
1: उड़ीसा का। रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।

0: urged parents to keep a closer watch on their children. But the encounter has now become a political flashpoint, with the Samajwadi Party alleging encounters happen on the basis of religion, while the Congress says the state cannot take the law into its own hands. Surya was allegedly lured on Bakrid before being stabbed to death on May 28. As his family demands action against every accused, the case has now snowballed into a full-blown law and order and political battle. Let's listen in to some of the reactions.
1: आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है।
2: ये बिल्कुल गलत है, कहीं भी उन पर फायरिंग नहीं होती, शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मॉडर्न ऑपरेटिव बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए, क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होना ही चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए आप, उससे कबुलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सजा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है।
3: मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एनकाउंटर करना इसका मतलब ऐसा, लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में लेना, आप गैर कानूनी काम करना, इसका मतलब पैसा होता है। कहाँ न कहाँ सरकार ने कभी भी इस तरह से कानूनी बात अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है।
0: With that, we'll slip in a short break. More updates on the other side. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
6: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
7: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचर झोल।
5: How will you celebrate?
6: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
8: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
9: This is a declaration of our state that to the entire country that

0: sure this was not the only incident.
1: তবে প্রাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
2: আর পিওর শাহি পনির মশালা ডিলিশিয়াস হেলদি এভরিডে
3: উই এট এনডি টিভি ট্রাভেলড অ্যাক্রস দ্য লেন্থ এন্ড ব্রেথ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল. This was the hottest election in all of India. And all of India watched it on NDTV.
4: Why I say this, this could be a big story.
5: Thank you.
3: Stories that no one else had.
6: The memorial they have built is not just for Avicii.
3: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
7: Moments
3: that gave competition viral fever.
8: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा
9: बंगाल बचाने का वोट
10: फाइट फॉर जस्टिस फाइट फॉर एवरी वुमन हियर
3: व्हेन इट वाज एनीथिंग बंगाल यू ट्यून्ड इन ओनली टू एनडीटीवी दिस जीओजी सिलेक्शंस एनडीटीवी
11: साइज ऑफ फिश व्हाट टेस्ट ऑफ फिश यू लाइक.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Politics over an encounter death days after 17-year-old Surya was stabbed to death in Ghaziabad. Then the main accused Asad was killed in a police encounter, which has triggered a fresh political storm in the state. Chief Minister Yogi Adityanath has called the killing unacceptable, saying crimes committed under the guise of friendship will not be tolerated, and urged parents to keep a closer watch on their children. But the encounter has now become a political flashpoint, with Samajwadi Party alleging encounters happen on the basis of religion, while the Congress has said the state cannot take law into its own hands. Surya was allegedly lured on Bakareed before being stabbed to death on May 28th. As his family demands action against every accused, the case has snowballed into a full-blown law and order and political battle as well.
1: आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा. दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा. अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है.
2: क्या क्या मांगे हैं? प्रमुख मांगे जो हैं वो शुरू में देखा हमने, पहले इनकाउंटर हुआ, फिर बुलडोजर का एक्शन, किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना?
3: देखिए, लोगों में सरकार की प्रायोरिटी ये होती है, लोगों में सुरक्षा की गारंटी देना. सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है. जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूँ ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग. और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पे मारा गया. इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है.
2: अच्छा, हमने पहले देखा कि असद का इनकाउंटर हुआ, परिवार जो है लगातार गुहार लगा रहा है कि बाकी जो छह लोग और इसमें सम्मिलित थे उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए. क्या
3: आप निश्चित समझिए, मौत की सजा मौत होती है, उन्हें सबको मौत की सजा मिलेगी.
4: ये बदबू गलत है, कहीं भी उन पर फायरिंग नहीं होती. शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मॉडस ऑपरेटिव बन चुका है कि आदमी को पकड़ो. देखिए, क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए. अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल. लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए आप, उससे कबुलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सज़ा दीजिए. लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है.
5: मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ. इनकाउंटर करना, इसका मतलब ऐसा, लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में लेना. आप गैर कानूनी काम करना, इसका मतलब पैसा होता है. कहाँ न कहाँ सरकार ने कभी भी इस तरह से कानूनी बात अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है.
6: अभी और छह बाकी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए.
2: योगी प्रशासन से कोई और मांग?
6: कोई मांग नहीं.
2: कितना मुश्किल वक्त है, पड़ाव है ये पूरे परिवार के लिए. सूर्या के जो है वो पिता भी नहीं है.
6: पिता नहीं है मेरे जीने का, यही सारा था, वो भी मेरा छीन लिया.
2: सूर्या से जब बात होती थी आपसे तो वो क्या कहता था, वो बड़ा होके क्या बनना चाहता था, कुछ कहता था?
6: अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी बाकी थी.
0: Let's now get you the latest news coming in on the Twisha Sharma death case. And the hearing was taking place in court today and heated arguments broke out. The CBI has not sought remand, and Giribala Singh, Twisha's mother-in-law, is presenting her own defense. Remember, she is a former justice, and according to the reports, she was shouting in a fit of rage in the court as she stepped up to argue her own case in court. Let's go across to Tanushree now for more on this entire story. And Tanushree, take us through, you know, what has happened in court and the heated arguments taking place, Giribala Singh arguing her own case.
7: Tusha Sharma case, Giriwala Singh has been presented in court where there was a heated argument during the court session, and Giriwala herself is speaking for her entire case, and also she has claimed that Anurag Srivastav, which is also Tusha Sharma, Tusha's lawyer, has allegedly assaulted her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
5: The line of control, Ship Arur, NDTV.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, will keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats, an election that felt more like a war.
3: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
8: We've got some breaking news just coming in.
9: Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchan, what's going on here?
3: Khela ho be.
10: Vijay is finishing off every existing political force.
9: This holds, Pradeep Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
11: Janta ko badhai de raha hu.
9: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV. आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
11: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
3: आज के की खबर झालमुड़ी ना माचर झोल।
9: How will you celebrate?
11: झालमुड़ी माचर झोल with रसगुल्ला।
10: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
12: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
13: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
9: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
14: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
15: I think that Shiv is not, was not the only incident.
16: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
17: Hi Red, check the audio. Hi Red, check the audio.
18: Let's do it, let's do it, let's start.
19: Breaking story, we're jumping straight into it.
20: We've got a picture of the letter.
21: What is in your letter?
20: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
8: 21 days in Kashmir. Unfiltered
3: Welcome back. A former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is protesting in Kolkata, and now she has said that opposition anti-BJP parties are all going to collect in Delhi and chart a plan, you know, going forward. She's also hit out at Trinamool Congress MLAs who've resigned, and she's called them traitors of the party. So Mamata Banerjee there taking to the streets once again, holding this protest, and said anti-BJP parties will be meeting Delhi to decide our country-wide course of action. And she also attacked the MLAs who were recently expelled, calling them traitors.
22: আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি আর যারা আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান যদি কোনোদিন কোনো ভালো কাজ করে থাকি কর্মই ধর্ম মাথায় রাখবেন সেটা মেনে চলব। আমরা দিল্লিতেও খুব শিগগিরই বিজেপি বিরোধী পার্টিগুলো মিলিত হচ্ছি এবং সেখানে আমরা আমাদের কর্মসূচি দেশ জুড়ে ঠিক করব। একটু অপেক্ষা করুন, নেতাজি জেসা হ্যাঁ, ভগৎ সিং জেসা হ্যাঁ, আম্বেদকর মজার জেসা হ্যাঁ, গিয়ে তার মূর্তিতে মহাত্মা গান্ধীজির মূর্তিতে মালা দিয়ে শপথ নিলাম। এই অত্যাচার, এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যারা করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ভাবে রাজনৈতিক ভাবে এর মতো আন্দোলন না করতে পারবো ততক্ষণ করেন মিছিল করা যাবে না, গেলেই অ্যারেস্ট হবে, মিছিলে যেতে পারবেন না, গেলেই অ্যারেস্ট করবো। এমএলএদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছেন, এমপিদের বাড়ি গিয়ে বলছেন, এনআইএ এর ভয় দেখাচ্ছে, ইডি এর ভয় দেখাচ্ছে, সিবিআই এর ভয় দেখাচ্ছে। এই সিআইডি তো আমার আমলেও ছিল, তখন তো সিআইডি এইভাবে এফেক্টিভলি কাজ করতো না, অন্যায় এসটিএফও করতো না।
3: All right, even as Mamata Banerjee held that protest in Kolkata, there was a separate drama that was underway at the Vidhan Sauda. Remember, there are rebel Trinamool MLAs now, and there's divisions between the Trinamool versus Trinamool over the leader of opposition. So that is the controversy that is now escalating. And expelled TMC MLA Ritha Bratta was there at the Vidhan Sabha, and a faction of TMC MLAs in fact want Ritha Bratta as the leader of opposition in the assembly. The Trinamool Congress has given a fresh letter to the Vidhan Sabha Speaker to recognize the LOP. Vidhan Sabha Speaker's office, however, refused to accept the letter, and the matter is now under a CID probe as there are allegations of forged signature. Let's listen into what Kunal Ghosh had to say.
0: Hum Speaker Sahib ke office mein aaye the party ke taraf se ek naya letter submit karne ke liye. Speaker Sahib nahi the to abhi call receive hua और आज बोल दिया रिसीव करने के लिए कोई रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं है, भारमली मना कर दिया।
1: सर क्या है लेटर, लेटर में
0: लेटर, लेटर का कंटेंट मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पार्टी का परमिशन लेना होगा। हम लोग कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है, हम लोग जो जीता है ना वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सिंबल पे ममता दीदी का पिक्चर यूज करके हम लोग जीता है।
3: All right, so Dave, high drama there in Kolkata, not just Trinamool Congress versus the BJP, but Trinamool versus the Trinamool. With that, we'll sip into a short break. Stay with us for more.

0: powered air taxi.
1: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
2: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
3: Illegal migrant, ye Bangladesh se ghuspatiya ke liye ye dono party pratibad hai, desh ki janta ke liye nahi. इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
4: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ। भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
5: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
6: ओडिशा का है। महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
7: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
8: The people of Kerala understood the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
9: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: rebellion within the Trinamool Congress, with speculation of a breakaway group challenging the leadership of Mamata Banerjee and even Abhishek Banerjee as well. The expulsion of two TMC MLAs after the signature row and after Mamata Banerjee said that they were indulged in anti-party activities has only fueled the rumour. Claims of dozens of MLAs skipping Mamata's meeting, reports of parallel huddles, and also now talk of a possible split have raised the big question. Number one, is Bengal heading towards its very own Shinde moment? The comparisons with Maharashtra stem from a very similar pattern, because in 2022, the Shiv Sena was rocked by rebellion led by Eknath Shinde, with a large section of MLAs distancing themselves from the party leadership, holding parallel meetings and eventually triggering a split, which was then seen as orchestrated by the BJP. So is this merely a show of internal dissent or the start of a challenge to the TMC leadership in the state of West Bengal? Take a listen to all the reactions coming in.
1: Trinamool Congress MLA de police diye bhoy dekhano hocche. Local IC ebong SP ra phone kore bolchen ebong barite police pathiye rakhchen jate tara berote na pare ebong tader porishkar bola hocche dol bhangun omuk loker sathe giye jogajog korun. Protom phone ta police korche.
2: पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है, उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड, द गेम इज ओवर।
3: ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के महल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है, और आज शायद ये दोपहर को 1 या 2 बजे ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं, और ये तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए।
4: एक एक पार्टी ऑफिस से क्या क्या सामान निकल रहा है, 40 बैरल तेल निकला है। 5 साल पहले त्राण राहत के लिए जो सामान भेजा गया था, कभी आइला में, कभी बाढ़ में, ये सब उनके पार्टी ऑफिस में मिल रही है, एमएलए और काउंसिलर के ऑफिस में मिल रहा है। लुटेरों का दल था, आज पब्लिक दरवाजा तोड़ करके सामान निकाल रहा है। सोच सकते हैं किस ढंग से ये लोग राजनीति करते थे, क्या करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं, टीएमसी छोड़ करके काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर, केवल पीसी और भातीजाई रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा।
5: टीएमसी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, लीडर्स आर लीविंग एंड मेनी मेनी न्यू एलिगेशंस आर कमिंग अप फ्रॉम देयर इंटरनल सोर्सेस। प्रोमिनेंट लीडर्स वर एक्सपेल्ड, सम डिसेंट वॉइसेस आर ओपन टू ऑल नाउ। I think she's in a do-or-die battle. So it's for her survival only. And who will fill up the vacuum in West Bengal? That is the more important question. And we from the left side will try our level best to fill up the vacuum of this TMC.
6: Look, it's like this. Now, for the protest, there are no people. The truth is this. Now, India will strengthen the government. और मुझे तो नहीं लगता कि टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। अब 80 में से 60 एमएलए नहीं आए, तो अब बात तो

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
5: The line of control, Ship Arun, NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
6: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
7: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री का बीइंग डिपिक्टेड।
8: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
9: ओडिशा का है। महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
10: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
11: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
12: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
13: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
14: Check the audio. High red, check the audio.
15: Let's do it.
16: Breaking stories, but jumping straight into it.
17: We've got a picture of the letter.
18: What is in your letter?
17: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
19: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
20: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
21: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
22: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
20: The line of control, Shiv Arur, NDTV.

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: margin, offered his victory to BJP counterpart, and the BJP leadership refused that. So these are the two incidents. One incident I know from some sources. Another is my own experience sitting with the TMC person in the studio who was continuously telling me, Didi, you know what they have done. IPAC has done this. IPAC has taken money. They want to give ticket to the scamsters. That was, but on camera, he was talking differently. Obviously, that was his
1: job. Okay, Pradeep Bhandari, before you come in, I think it's only fair Badal Debnath responds to this. Ab all the worms... All the worms are spilling out, Badal Debnath. And tell me, who was the phone? Pradeep Bhandari feels like you didn't have a phone from iPad. It's a good thing. If you had a call from Didi, you had Didi's call. You didn't have a phone off. You had
2: the whole program. I'm talking directly in Hindi. And I'm talking to NDTV. The whole program you had to do today.
1: How?
2: Number one. मैं आपका सवाल का और ओनडीटीवी का सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं किसी जूनियर आर्टिस्ट का सवाल का जवाब देने के लिए मैं बैठा नहीं मैं 35 साल हूं सोशल काम करता हूं सोशल काम बहुत सारे जगह में जाता हूं कोई जिला नेता नहीं हूं और मुझे कुछ अभी तक मैं किसी से बहुत बार पार्टी ने मेरा ये जो बोल रहा ना बहुत बार मेरा पार्टी से मेरा बायोडाटा लिया था मैंने किसी को बायोडाटा खुद नहीं भेजा ना दीदी को भेजा आज तक ना मुकुल राय को भेजा ना पार्थो चट्टोपाध्याय को भेजा ना और जब पहले जो सीनियर लिया था बुक्सीदार को भेजा ये लोग बार बार इस बार भी बायोडाटा लिया था मेरा मैं हाथ जोड़ के बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं सोशल वर्कर रहने जाता हूँ सेवा का काम करता हूँ
1: अरे बादल जी दिस इज नॉट टू डिस्कस योर ओन करियर ग्राफ कैन वी कम टू द पॉइंट
2: मैडम मैडम ममता किसी के साथ रात 1:30 बजे 2 बजे भी बात करता हूँ मुझे अलाउ मिलता है तभी दिल्ली जाता हूं और आपके चैनल में बैठता हूं नहीं मतलब मैं मुझे जरूरत नहीं आपके चैनल पे बैठ के कुछ
3: पे हाथ लग दिया है
2: सबसे बड़ा बात है तीसरा बात है इतना बड़ा मैं रिस्क देता हूं इतना बड़ा जो रिस्क मैं लेता हूं इस रिस्क के लिए जैसे प्रदीप भंडारी बताया था मेरे घर में वो हल्के से बोला था मैं मुझे मालूम है वो भाई भाई हूँ मैं हम सब ईडी इनकम टैक्स भेजेगा मेरे घर में तो मैं मेरे ऊपर इतना टॉर्चर हुआ मेरा घर तोड़ दिया गया सीपीएम ने 28-29 केस दिया अभी तक मैं किसी से बदला नहीं लिया और किसी को छोड़ के नहीं गया ये है सोशल वर्कर मैं मुझे 28-30 केस दिया था
4: तो पद्मजा
1: बताइए
4: व्हाई डू यू यूज पॉलिटिकल
2: एनालिस्ट दो तीन बार
4: यू शुड ट्राई सोशल वर्कर
2: मेरा माँ को गाली दिया लेकिन मैं किसी को छोड़ के नहीं गया मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ मेरा एज 54 हुआ मैडम 54 एज चल रहा है और अभी भी हर जगह मैं जाता हूँ जहां बोलता है तही करता हूँ और मैं जब वैसे बोलता हूँ ममता बनर्जी को मैं बचपन से प्यार करता हूँ जब मेरा 14 साल था तब उनका दयाल राइटिंग किया था 1984 में तब 1986 में मैं माध्यमिक दिया
1: Okay. On a serious note though, Riju Dutta, I think what Badal Debnath is trying to say is that there is a real ideology which lives in the heart of people like him, whether they are social workers, whether they are political analysts, whether they are party spokespersons. And then there are junior artists, in his words, who are only going to run after power and money. Ideology means nothing to them. Riju Dutta.
4: See, I will say this. Trinamool Congress has only one ideology and that is Mamata Banerjee. We are not like the BJP or the left with specific ideology. Trinamool Congress's ideology is Mamata Banerjee. Badal Debnath does Trinamool Congress looking at Mamata Banerjee. I did Trinamool Congress for 15 years looking at Mamata Banerjee. There is no denying that. But the thing is, like Mr. Social Worker Debnath ji is telling me, that he has suffered so much, he has done so much and this and that and falana, dimkana. The party has still not recognized him. The party, abhi to spokesperson sab khali ho gaye. Now to young kids of 20, 21 year old people are coming to channels as spokespersons. Why do not they make Badal Debnath spokesperson? Ye to banned channels mein jate the aur bechare ko chamkate the.
1: Chalo bhai, idea number 3 has also been offered. Pradeep Bhandari. Resume bhej dijiye bhai Riju Dutta ko, wo pahuncha denge. Bataiye.
5: Well, I would appeal to people that Badal ji ko koi na koi Bombay ke andar kisi na kisi picture mein role de dijiye. ये बिल्कुल जो है अच्छे पिक्चर में रोल फिट होने वाले हैं बट आई विल कम टू द मूड पॉइंट स्टिल नॉट नाइदर बादल हैज आंसर्ड नॉर सोमनाथ जी हैज आंसर्ड वेयर आर द टीएमसी एमपीस वेयर आर द टीएमसी एमएलएस वेयर इज मेनका गोरुस्वामी हु वाज गिवन द राज्यसभा ऑल ऑफ देम नो दैट द ओनली आइडियोलॉजी ऑफ टीएमसी

0: So there was an approval and agreement from each and every party. They had to come together. There was no other option left. Either you come out of it or you declare this nation bankrupt. So this was a crisis time. We are talking about why this is important for the Gen Z or the generation next, that this country, you know, was not always supplied with Coke and Pepsi. Or this country was not holding mobile phones. There was one person before malls came in, you know, who was responsible, whose one decision was responsible, where the entire nation came together and took this decision that the challenges were the naysayers within the department. Everyone thought that, you know, he's the scapegoat for the political political regime. And everyone was waiting for him to fail. And there was this man and his conviction, man with very few words, with loads of action, loads of ideas, and how he, when he implemented it, and he became, and the nation became successful in executing it, that becomes the reason for Manmohan Singh and P.V. Narasimha Rao Sarkar, you know, for, to come up with liberalization and the, how the open market economy, everything started, you know, unfolding. So I'm not interested in that as an actor. What I'm interested in, the a protagonist coming into a challenging time, and with his effort and ideas, we somehow accomplished something impossible without letting anyone know about it, without letting even the media know about it.
1: You engage with politics. आपके बिहार चुनाव के दौरान भी आपका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था कि आप क्या आप एंडोर्स कर रहे हैं आरजेडी को?
0: देखिए, ये तो आपके लोगों ने बताया होगा आपको. मैं तो एंडोर्स नहीं कर रहा था.
1: नहीं, नहीं, ऐसा वीडियो बनाया गया था कि भाई
0: वीडियो,
1: मुझे एंडोर्स.
0: हाँ, ऐसा वीडियो तो कभी भी बना सकते हैं. मैं आपको
1: जैसे आपने एक और पहले दिया था स्टेटमेंट दिया था जो इनटॉलरेंस की पूरी बात हो रही थी उसमें आपने एंगेज किया था कि भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना खास इनटॉलरेंस देश में हो रहा है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को
0: किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना मैं बिलोंग करता हूँ ना मैं कोई मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं. मैं पागल हूं अपने अभिनय के पीछे. और जहां तक बात है पढ़ने लिखने की, तो जाहिर सी बात है मैं अज्ञानी तो नहीं रहना चाहता हूं. मैं उन लोगों की तरह से नहीं होना चाहता हूं कि जो ट्विटर पर जाकर के लोगों को गाली देते हैं बिना किसी ज्ञान के. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई अपने काम में लगाना चाहता हूँ. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई उस फिल्म में लगाना चाहता हूँ जो फिल्म मैं कर रहा हूँ. अगर मैं पढ़ूँगा लिखूँगा नहीं तो मैं गवर्नर कैसे कर पाऊँगा? तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को एजुकेट करूं. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नॉलेज गैदर करूं. ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं मुझसे यंग जनरेशन भी आके बात करता है. सो व्हेन द यंग जनरेशन इज कमिंग एंड टॉकिंग टू मी, आई कांट बी टॉकिंग टू देम इन एयर. माय कन्वर्सेशन विद देम विल बी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज दैट आई गैदर्ड, राइट? सो as a responsible citizen of this country, we try to educate ourselves or enlighten ourselves.
1: क्या पूछते हैं आपसे young generation? क्योंकि आजकल Gen Z की बहुत बात होती है. क्या पूछता है Gen Z आपसे?
0: देखिए, Gen Z के पास में क्या होता है, जो usually I'm always wondering, they want to spend some time with me, and I keep telling them that, you know, spending time with me, I will say few words that may click with you or inspire you. But at the core of it, you will have to work very hard. But somewhere they are coming to me expecting that कि मैं एक कोई acting की पुड़िया दे दूँगा. पुड़िया तो ऐसी कोई नहीं होती है. पद्मजा जो है कई सालों से इस न्यूज़ रूम में बैठ रही हैं, तब जा कर के उनको ज्ञान हुआ. लेकिन आपको याद होगा जब पहली बार आप न्यूज़ रूम में आके बैठी होंगी तो इन कैमराज ने और इस माइक ने आपको बहुत डराया होगा. आपके पीछे जो ये सारा चल रहा है इसने बहुत डराया होगा. इन लाइट्स से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी. पीछे लोग हल्का सा भी मूव करते होंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता होगा. इस ओवर द इयर्स यू गेन्ड नॉलेज अबाउट योर प्रोफेशन. यू गेन नॉलेज थ्रू योर एक्सपीरियंस. यू गेन नॉलेज बाय रीडिंग अबाउट इट, बाय रीडिंग वेरियस अदर पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड दैट्स हाउ यू रेडी योर सेल्फ टू इम्पार्ट द सेम एक्सपीरियंस and knowledge to the next generation, right? And this is what I do.
1: But आपको लगता है कि Gen Z के लिए अभी देश एक ideal situation में है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने सुना

0: कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि आपने जेनजी का जिक्र उठाया था।
1: आप जो है ना फंसवाने के चक्कर में आई हुई, आप तैयार वार होकर के आई हैं।
0: सब लोग जो है आपसे इतने सवाल पूछते हैं तो दो तीन सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ। अब देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन शुरू करने वाली है, जेनजी आपसे पूछेगा मनोज जी बताइए क्या करे अभी इस देश में, जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या आप देखे एक विकल्प कॉकरोच जनता पार्टी, क्या करेंगे मनोज?
1: अच्छा देखिए क्या है, पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले उनको ये बात बोलूँगा कि आप अपनी स्थिति में अपनी स्थिति को बेहतर जानते हैं, मनोज वाजपेयी नहीं जानता है। मनोज वाजपेयी इस समय 32 साल से इस फिल्म के निर्माण में लगा है, एक एक्सपीरियंस है। मैं आपकी स्थिति तक जानना चाहूँ तब भी नहीं जान पाऊँगा, लेकिन अगर आप स्थिति को लेकर सजग हैं, उसको लेकर के प्रताड़ित महसूस करते हैं, तो जो भी संभव हो सके वो कीजिए। और आपको एम्पावर किया गया, देखिए आप अगर सोशल मीडिया से आप एम्पावर कर रहे हैं, मोबाइल हर हाथ में फ़ोन देना मतलब क्या है? एम्पावरिंग द पीपल ऑफ द कंट्री। जब आप एम्पावर करते हैं तो कुछ चीज़ें उनकी आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन एट द कोर ऑफ इट, इफ़ यू आस्क मी, एट द कोर ऑफ इट, मैं हमेशा जो है एक ही बात कहता हूँ। मेरे बचपन में एक मास्टर साहब थे, उनका नाम था छेदी महतो। उनके क्लास में मैं जाता था, जो कि मैं एक सम्मानित परिवार से आता था, तो हम लोग अपने अपने बोरी बिछाते थे, बैठते थे उस झोपड़ी में, और मेरे बगल में एक रामचंद्र था जो सुबह घास काट करके अपनी गाय को खिला करके और फिर वो स्कूल आता था। हम दोनों की उम्र क्या थी? 6 साढ़े 6 साल 7 साल। और रामचंद्र टॉपर था। रामचंद्र के जीवन में छेदी महतो साहब का बहुत बड़ा योगदान था। रामचंद्र जो है वो ज़्यादा आगे कॉलेज के बाद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, रिसोर्सफुल नहीं था, तो उसने अपना ट्यूशन खोला और वो ट्यूशन सुपरहिट था बेतिया हमारे शहर में। हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए रामचंद्र जो है एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर हो गया था। रामचंद्र ने उनको पढ़ाना शुरू किया था, उनको सिखाना शुरू किया और कई सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई। तो मेरा ये कहना है, जो यंग जनरेशन होता है ना, उसकी उम्मीद की एक ही किरण होती है, छेदी महतो। हर किसी का एक छेदी महतो होता है। मेरे लिए जो छेदी महतो थे, मेरे लिए जो गंगा सागर सर थे मेरे स्कूल के, तो जब नई ऊर्जा जब होती है, हमको उनको बिठा करके उनको सुनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है या है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके आगे कुछ भी आप सवाल करेंगी तो मैं कहूँगा गवर्नर के आगे आउट ऑफ सिलेबस है।
0: एक नया जॉनर भी है, जैसे कि पिछले साल हमारे धुरंधर आई थी, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंड बहुत सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, ये कह के कि भाई ओवर द टॉप है एवरीथिंग, यू डू नॉट नीड टू यू नो बीट पीपल ऑन द हेड विद अ हैमर। हाउ डू यू कंपेयर दैट जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग विद व्हाट मे बी इज अ मोर क्वाइट नेशनलिज्म कह लीजिए या क्वाइट स्टोरी टेलिंग कह लीजिए, हाउ डू यू कंपेयर द टू? क्या दोनों के लिए एपेटाइट है देश में?
1: अब हमेशा से रही है। आप जब छोटी थी, जब बड़ी हो रही थी, अपने पेरेंट्स के साथ फिल्म देखने जाती थी, तब का समय भी याद कर लीजिए, बड़े बड़े बजट की फिल्में भी चलती थी और छोटे बजट की भी फिल्में चलती थी। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि देर यूज टू बी अ टाइम व्हेन मिस्टर बच्चन केम ऑन द सीन एंड इट वॉज लाइक स्टॉप, ही वॉज हरिकन, मतलब नो स्टार कुड स्टैंड दैट स्टॉप। यही बड़ी मतलब आंधी की हवा में उड़ रहे थे सबके सब, बट एट द सेम टाइम देर वॉज दिस क्वाइट प्रोडक्शन हाउस विच वॉज बिल्डिंग अप बट मेकिंग स्मॉल एंड मिड रेंज फिल्म एंड देयर हीरो वॉज अमोल पालेकर, इवन दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल,
0: ऋषिकेश मुखर्जी।
1: ओनली इन द टाइम ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन देर वॉज दिस पैरेलल मूवमेंट हैपन वेर मिस्टर श्याम बेनेगल एंड सो मैनी अदर्स were making films and they were getting their audience to the theater. So every time will have its big budget, mid budget and small budget.
0: But now they say it's naya bharat, no? Naya bharat jahan pe kuch bada hona chahiye ki humne Pakistan ko ekdam ghutno pe le aaya type ki film.
1: Naya bharat mein ek hindustan aur bhi rehta hai jo yuva varg hai एक नया भारत में

0: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
1: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
2: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
3: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
4: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
5: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
6: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
7: Higher Ed, check the audio. Higher Ed, check the audio.
8: Let's do it. Let's do it. Let's start.
9: Breaking story, we're jumping straight into it.
10: We've got a picture of the letter.
11: What is in your letter?
10: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
12: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
13: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
14: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
15: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
13: The line of control, Shiv Arun, NDTV.

0: और आपके चैनल में बैठता हूँ, नहीं मतलब मैं मुझे जरूरत नहीं आपके चैनल पे बैठ के कुछ
1: हाथ रख दिया है,
0: सबसे बड़ा बात है। तीसरा बात है, इतना बड़ा मैं रिस्क देता हूँ, इतना बड़ा जो रिस्क मैं लेता हूँ रिस्क के लिए, जैसे प्रदीप भंडारी ने बताया था मेरे घर में, वो हल्के से बोला था, मैं मुझे मालूम है वो भाई भाई हूं मैं, हम सब ईडी इनकम टैक्स भेजेगा मेरा घर में, तो मैं मेरे ऊपर इतना टॉर्चर हुआ, मेरा घर तोड़ दिया गया, सीपीएम ने 28-29 केस दिया, अभी तक मैं किसी से बदला नहीं लिया और किसी को छोड़ के नहीं गया, ये है सोशल वर्कर। मैं मुझे 28-30 केस दिया था,
2: तो पद्मजा
3: बताइए
2: व्हाई डू यू यूज पॉलिटिकल एनालिस्ट,
0: दो तीन बार
2: यू शुड ट्राई सोशल वर्कर,
0: मेरा माँ को गाली दिया लेकिन मैं किसी को छोड़ के नहीं गया, मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा एज 54 हुआ मैडम, 54 एज चल रहा है और अभी भी हर जगह मैं जाता हूँ, जहाँ बोलता है तही करता हूँ, और मैं जब वैसे बोलता हूँ ममता बनर्जी को मैं बचपन से प्यार करता हूँ, जब मेरा 14 साल था तब उनका दिहल राइटिंग किया था 1984 में, तब 1986 में मैं माध्यमिक दिया,
3: On a serious note, though, Riju Datta, I think what Badal Devnath is trying to say is that there is a real ideology which lives in the heart of people like him, whether they are social workers, whether they are political analysts, whether they are party spokespersons, and then there are junior artists, in his words, who are only going to run after power and money. Ideology means nothing to them. Riju Datta.
2: See, I will say this, Trinamool Congress has only one ideology, and that is Mamata Banerjee. We are not like the BJP or the left with specific ideology. Trinamool Congress's ideology is Mamata Banerjee. Badal Devnath does Trinamool Congress looking at Mamata Banerjee. I did Trinamool Congress for 15 years looking at Mamata Banerjee. There is no denying that. But the thing is, like Mr. Social Worker Devnath ji is telling me, that he has suffered so much, he has done so much and this and that and falana, dimkana. The party has still not recognized him. The party, abhi to spokesperson sab khali ho gaye. Now to young kids of 20, 21 year old people are coming to channels as spokespersons. Why do not they make Badal Devnath spokesperson? Ye to ban channels mein jate the aur bechare ko chamkate the.
3: Chalo bhai, idea number 3 has also been offered. Pradeep
4: Bhandari.
3: Resume bhej dijiye bhai, Riju Datta ko wo pahuncha denge. Bataiye.
4: Well, I would appeal to people that Badal ji ko koi na koi Bombay ke andar kisi picture mein role de dijiye. ये बिल्कुल जो है अच्छे पिक्चर में रोल फिट होने वाले हैं, बट आई विल कम टू द मूड पॉइंट, स्टिल नॉट नाइदर बादल हैज आंसर्ड नॉर सोमनाथ जी हैज आंसर्ड, वेयर आर द टीएमसी एमपीस, वेयर आर द टीएमसी एमएलएस, वेयर इज मेनका गोरुस्वामी हु वाज गिवन द राज्यसभा, ऑल ऑफ देम नो दैट द ओनली आइडियोलॉजी ऑफ टीएमसी वाज पावर, पावर गॉन, ऑल ऑफ देम हैव पुट देयर फोन, समबडी माइट बी टॉकिंग टू राहुल गांधी, समबडी माइट बी टॉकिंग टू अखिलेश, आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग एंड रिकॉर्ड दिस क्लिप, महुआ मोइत्रा वुड हैव ओपनड हर हॉटलाइन विद राहुल गांधी ऑलरेडी बिकॉज शी नोज दैट ममता बनर्जी डज नॉट हैव अ फ्यूचर, बादल देवनाथ माइट बी थिंकिंग मैं सोशल एनालिस्ट लगा दूं सपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी क्योंकि आप सपोर्टिंग टीएमसी ज्यादा डिबेट में नहीं आ सकते, देयर इज अ क्विज मास्टर हु माइट बी थिंकिंग टू लॉन्च अ क्विज शो, साइनी घोष हैज ऑलरेडी बिकम अ न्यू एनरेज्ड हिंदू आफ्टर द इलेक्शन, सबने अपना करियर अपना रिटायरमेंट प्लान देख लिया है सिवाय दो लोगों के, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, क्योंकि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का कार्यकर्ता खड़ा हो गया, दैट्स द ओनली ट्रुथ, मार्क माय वर्ड्स, ऑल दीज एमपीज एंड एमएलएज हु हैव नॉट टर्नड अप माइट हैव ओपनड देयर हॉटलाइन आइदर विद द कांग्रेस और द टीएमसी, एटलीस्ट द एमपीज वुड हैव स्टार्टेड टू स्पीक टू राहुल गांधी कि हमें ले लो अब टीएमसी का कोई भविष्य।
3: बादल देवनाथ
0: मैडम, मैं इनको प्रदीप भंडारी को बार बार मैं कहूंगा, बार बार मैं बोला, बहुत बार बोला, एक बार दो बार नहीं, प्रदीप भंडारी का मैं एक आंसर एक सवाल कर रहा हूँ, प्रदीप भंडारी बता दो तो आज का पूरा देश में औरंगजेब कौन है?
4: अभिषेक बनर्जी।
0: अच्छा,
4: हाँ
0: औरंगजेब कौन है?
4: अभिषेक बनर्जी।
0: हाँ तुम नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा देश
4: भाईपो है,
0: पूरा देश को
4: जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके वो है,
0: एक ममता बनर्जी एक,
4: अरे आप तो यार बादल भाई बात ना करो, आप पहले निर्णय हो कौन
0: पर तब जीत का बार बड़ा बड़ा बातें करते हैं,
4: बादल भाई आपके घर के बाहर निकलो और देखो सच्चाई,
0: उस पर शर्म करो,
4: बादल होबे, बादल देवनाथ टाटा बाय बाय होबे,
0: 40 साल 37-38 साल उम्र बच्चा को औरंगजेब बोल रहा हूँ, अरे उसको पहले आने दो,
4: क्या हो गया क्या, वो जो 4 महीने के पहले कह रहा था कि गृह मंत्री को आ जाए, 4 महीने के पाल्टा के अंदर आके दिखाए, जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो है पश्चिम बंगाल के अंदर
0: तुमने बर्बाद किया, मेक इन इंडिया हुआ ना,
4: बच्चा है 37 साल का, कोई बच्चा

0: declared this nation bankrupt. So this was a crisis time. We are talking about why this is important for the Gen Z or the generation next, that this country, you know, was not always supplied with Coke and Pepsi. Or this country was not holding mobile phones. There was one person before malls came in, you know, who was responsible, whose one decision was responsible, where the entire nation came together and took this decision. That the challenges were the naysayers within the department. Everyone thought that, you know, he's the scapegoat for the political political regime, and everyone was waiting for him to fail. And there was this man and his conviction, man with very few words, with loads of action, loads of ideas, and how he, how when he implemented it, and he became, and the nation became successful in executing it, that becomes the reason for Manmohan Singh and P.V. Narasimha Rao Sarkar, you know, for, to come up with liberalization and the, how the open market economy, everything started, you know, unfolding. So I'm not interested in that as an actor. What I'm interested in, the a protagonist coming into a challenging time, and with his effort and ideas, we somehow accomplish something impossible without letting anyone know about it, without letting even the media know about it.
1: You engage with politics. आपके बिहार चुनाव के दौरान भी आपका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था कि आप क्या आप endorse कर रहे हैं RJD को?
0: देखिए, ये तो आपके लोगों ने बताया होगा आपको. मैं तो एंडोर्स नहीं कर रहा था.
1: नहीं, ऐसा वीडियो बनाया गया था कि भाई
0: वीडियो,
1: मनोजी एंडोर्स.
0: हाँ, ऐसा वीडियो तो कभी भी बना सकते हैं. मैं आपको
1: जैसे आपने एक और पहले दिया था, स्टेटमेंट दिया था जो इनटॉलरेंस की पूरी बात हो रही थी, उसमें आपने एंगेज किया था कि भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना खास इनटॉलरेंस देश में हो रहा है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को,
0: किसी पॉलिटिकल पार्टी में का ना मैं बिलोंग करता हूँ, ना मैं कोई मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं. मैं पागल हूं अपने अभिनय के पीछे. और जहां तक बात है पढ़ने लिखने की, तो जाहिर सी बात है मैं अज्ञानी तो नहीं रहना चाहता हूं. मैं उन लोगों की तरह से नहीं होना चाहता हूं कि जो ट्विटर पर जाकर के लोगों को गाली देते हैं बिना किसी ज्ञान के. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई अपने काम में लगाना चाहता हूँ. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई उस फिल्म में लगाना चाहता हूँ जो फिल्म मैं कर रहा हूँ. अगर मैं पढ़ूँगा लिखूँगा नहीं तो मैं गवर्नर कैसे कर पाऊँगा? तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को एजुकेट करूं. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नॉलेज गैदर करूं. ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं मुझसे यंग जनरेशन भी आके बात करता है. सो व्हेन द यंग जनरेशन इज कमिंग एंड टॉकिंग टू मी, आई कैन बी टॉकिंग टू देम इन एयर. माई कन्वर्सेशन विद देम विल बी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज दैट आई गैदर्ड, राइट? सो as a responsible citizen of this country, we try to educate ourselves or enlighten ourselves.
1: क्या पूछते हैं आपसे young generation? क्योंकि आजकल Gen Z की बहुत बात होती है. क्या पूछता है Gen Z आपसे?
0: देखिए, Gen Z के पास में क्या होता है, जो usually I am always wondering, they want to spend some time with me, and I keep telling them that, you know, spending time with me, I will say few words that may click with you or inspire you. But at the core of it, you will have to work very hard. But somewhere they are coming to me expecting that कि मैं एक कोई acting की पुड़िया दे दूँगा. पुड़िया तो ऐसी कोई नहीं होती है. पद्मजा जो है कई सालों से इस न्यूज़ रूम में बैठ रही हैं, तब जा कर के उनको ज्ञान हुआ है. लेकिन आपको याद होगा जब पहली बार आप न्यूज़ रूम में आके बैठी होंगी तो इन कैमराज ने और इस माइक ने आपको बहुत डराया होगा. आपके पीछे जो ये सारा चल रहा है इसने बहुत डराया होगा. इन लाइट्स से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी. पीछे लोग हल्का सा भी मूव करते होंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता होगा. इस ओवर द इयर्स यू गेन्ड नॉलेज अबाउट योर प्रोफेशन. यू गेन नॉलेज थ्रू योर एक्सपीरियंस. यू गेन नॉलेज बाय रीडिंग अबाउट इट, बाय रीडिंग वेरियस अदर पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड दैट्स हाउ यू रेडी योर सेल्फ टू इम्पार्ट द सेम एक्सपीरियंस and knowledge to the next generation, right? And this is what I do.
1: But आपको लगता है कि Gen Z के लिए अभी देश एक ideal situation में है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि आपने Gen Z का जिक्र उठाया था.
0: आप जो है ना फंसवाने के चक्कर में आई हुई, आप तैयार वार होकर के आई हैं.
1: सब लोग जो है आपसे इतने सवाल पूछते हैं तो दो तीन सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ. अब देखिए, कॉकरोच जनता

0: पार्टी आंदोलन शुरू करने वाली है, जेन ज़ी आपसे पूछेगा मनोज जी बताइए क्या करें अभी इस देश में, जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या आप देखें एक विकल्प कॉकरोच जनता पार्टी, क्या करेंगे मनोज?
1: अच्छा देखिए क्या है, पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले उनको ये बात बोलूँगा कि आप अपनी स्थिति में अपनी स्थिति को बेहतर जानते हैं, मनोज वाजपेयी नहीं जानता है। मनोज वाजपेयी इस समय 32 साल से इस फिल्म के निर्माण में लगा है, एक एक्सपीरियंस है। मैं आपकी स्थिति तक जानना चाहूँ तब भी नहीं जान पाऊँगा, लेकिन अगर आप स्थिति को लेकर सजग हैं, उसको लेकर के प्रताड़ित महसूस करते हैं, तो जो भी संभव हो सके वो कीजिए। और आप, आपको एम्पावर किया गया, देखिए आप अगर सोशल मीडिया से आप एम्पावर कर रहे हैं, मोबाइल हर हाथ में फ़ोन देना मतलब क्या है, एम्पावरिंग द पीपल ऑफ द कंट्री। जब आप एम्पावर करते हैं तो कुछ चीज़ें उनकी आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन एट द कोर ऑफ इट, इफ़ यू आस्क मी, एट द कोर ऑफ इट, मैं हमेशा जो है एक ही बात कहता हूँ। मेरे बचपन में एक मास्टर साहब थे, उनका नाम था छेदी महतो। उनके क्लास में मैं जाता था, जो कि मैं एक सम्मानित परिवार से आता था, तो मैं, हम लोग अपने अपने बोरी बिछाते थे, बैठते थे उस झोपड़ी में, और मेरे बगल में एक रामचंद्र था जो सुबह घास काट करके अपनी गाय को खिला करके और फिर वो स्कूल आता था। हम दोनों की उम्र क्या थी, 6 साढ़े 6 साल 7 साल, और रामचंद्र टॉपर था। रामचंद्र के जीवन में छेदी महतो साहब का बहुत बड़ा योगदान था। रामचंद्र जो है वो ज़्यादा आगे कॉलेज के बाद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, रिसोर्सफुल नहीं था, तो उसने अपना ट्यूशन खोला और वो ट्यूशन सुपरहिट था बेतिया हमारे शहर में। हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए रामचंद्र जो है एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर हो गया था। रामचंद्र ने उनको पढ़ाना शुरू किया था, उनको सिखाना शुरू किया और कई सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई। तो मेरा ये कहना है, जो यंग जनरेशन होता है ना, उसकी उम्मीद की एक ही किरण होती है, छेदी महतो। हर किसी का एक छेदी महतो होता है। मेरे लिए जो छेदी महतो थे, मेरे लिए जो गंगा सागर सर थे मेरे स्कूल के, तो जब नई ऊर्जा जब होती है, हमको उनको बिठा करके उनको सुनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है या है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके आगे कुछ भी आप सवाल करेंगी तो मैं कहूँगा गवर्नर के आगे आउट ऑफ सिलेबस है।
0: एक नया जॉनर भी है, जैसे कि पिछले साल हमारे धुरंधर आई थी, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंड बहुत सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, ये कह के कि भाई ओवर द टॉप है एवरीथिंग, यू डू नॉट नीड टू यू नो बीट पीपल ऑन द हेड विद अ हैमर। हाउ डू यू कंपेयर दैट जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग विद व्हाट मे बी इज अ मोर क्वाइट नेशनलिज्म कह लीजिए या क्वाइट स्टोरी टेलिंग कह लीजिए, हाउ डू यू कंपेयर द टू? क्या दोनों के लिए एपेटाइट है देश में?
1: अब हमेशा से रही है। आप जब छोटी थी, जब बड़ी हो रही थी, अपने पेरेंट्स के साथ फिल्म देखने जाती थी, तब का समय भी याद कर लीजिए, बड़े बड़े बजट की फिल्में भी चलती थी और छोटे बजट की भी फिल्में चलती थी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि देर यूज टू बी अ टाइम वेन मिस्टर बच्चन केम ऑन द सीन एंड इट वॉज लाइक स्टॉप, ही वॉज हरिकन, मतलब नो स्टार कुड स्टैंड दैट स्टॉम, यही बड़ी, मतलब आंधी की हवा में उड़ रहे थे सबके सब। बट एट द सेम टाइम देर वॉज दिस क्वाइट प्रोडक्शन हाउस विच वॉज बिल्डिंग अप बट मेकिंग स्मॉल एंड मिड रेंज फिल्म एंड देयर हीरो वॉज अमोल पालेकर, इवन दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल,
0: ऋषिकेश मुखर्जी।
1: ओनली इन द टाइम ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन देर वॉज दिस पैरेलल मूवमेंट हैपन वेर मिस्टर श्याम बेनेगल एंड सो मैनी अदर्स वर मेकिंग फिल्म्स एंड देवर गेटिंग देयर ऑडियंस टू द थिएटर। सो एवरी टाइम विल हैव इट्स बिग बजट, मिड बजट एंड स्मॉल बजट।
0: बट नाउ दिस इज नया भारत, नो नया भारत जहाँ पे कुछ बड़ा होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को एकदम घुटनों पे ले आया टाइप की फिल्म।
1: नया भारत में एक हिंदुस्तान और भी रहता है जो युवा वर्ग है, और एक नया भारत में वो मजदूर भी है, नया भारत में ऑटो रिक्शा वाला भी है, तो हम सबके लिए फिल्में बनाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस नए भारत की जिसकी बात कर रही हैं आप, उसमें परिवार तो इस भारत से अलग नहीं है,